0: vous avez transmis de la musique par la pensée.
1: Aimez-vous ça?
0: C'est merveilleux.
2: स्वात्म सुखावबोधे निश्रेयसे जायलिकायमाने संसार हालाल मोहशान्ति अन्ति अन्ति अन्ति
3: Solenoid Radio Show.
4: Solenoid Radio Show